0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित की यात्रा पर हैं। स्पेन की 7 दिनों की प्रेरित यात्रा के पहले पड़ाव मैड्रिड में तीसरे दिन आज सोमवार को संत पापा का कार्यक्रम इस प्रकार है। आज 10:30 बजे मैड्रिड के संसद भवन में संसद के सदस्यों को संबोधन, 11:30 बजे स्पानी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के मुख्यालय में स्पेन के धर्माध्यक्षों से मुलाकात, 6:00 बजे सांता मरिया ला रियल डे ला अल्मुडेना महागिरजाघर में प्रार्थना और संत पापा का उपदेश, और 7:00 बजे संत पापा संतियागो बर्नाब्यू स्टेडियम में स्थानीय धर्म प्रांत के समुदाय को संबोधित करेंगे। स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन संत पापा लियो 14वें ने कला, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और खेल की दुनिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए समय निकाला और उन्हें तेजी से बिखरती दुनिया में एकजुटता, बातचीत और उम्मीद के बंधन बनाने में नए हीरो बनने के लिए आमंत्रित किया। मैड्रिड के मोविस्टार स्टेडियम में संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था और खेल की दुनिया के साथ नेटवर्क बुनना नामक कार्यक्रम में कलाकार, शिक्षाविद, व्यवसाय नेतागण, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और एथलीट एक साथ आए और कलीसिया एवं आज के समाज के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के मकसद से बातचीत की। वक्ताओं की बातें सुनने के साथ साथ मशहूर डांसर सारा बारास और उनके दल द्वारा फ्लेमेंको संगीत और नृत्य देखने के बाद संत पापा लियो ने अपना भाषण स्पेन की बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत की तारीफ करते हुए शुरू किया, जिसमें देश की इतिहास में भुनी सुंदरता की बात की गई। फिर भी उन्होंने कहा कि पिछली पीढ़ियों की कामयाबियों की तारीफ से एक ऐसा सवाल जरूर उठता है जो हर किसी को परेशान करता है, हम भविष्य के लिए क्या विरासत छोड़ रहे हैं और इसके अलावा हम किस तरह का समुदाय बना रहे हैं। संत पापा ने समाज में नव परिवर्तन और संचार की जबरदस्त क्षमता को स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर प्रौद्योगिकीय और आर्थिक प्रगति इंसान से अलग हो जाती है तो वे अपना गहरा मकसद खो सकती हैं। उन्होंने कहा, हम मीडिया में विशेषज्ञ और प्रभावी उत्पादक बनने की जोखिम उठाते हैं, फिर भी यह पक्का नहीं होता कि हम क्यों, किस मकसद से, किसके साथ और किसके लिए उत्पादन करते हैं। हाल ही में प्रकाशित विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए संत पापा ने जोर देकर कहा कि इंसान कलीसिया के लिए रास्ता और सच्चा अभिन्न विकास का केंद्र बना हुआ है। इस वजह से कलीसिया संस्कृति को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि संस्कृति ही उन खास तरीकों में से एक है जिससे इंसान अपनी पहचान जाहिर करता है और उसे आकार देता है। संस्कृति और कृषि शब्दों के बीच के संबंध पर विचार करते हुए संत पापा ने अपने दर्शकों को यह सोचने के लिए आमंत्रित किया कि आज का समाज आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बो रहा है। उन्होंने पूछा, हमारे समाज में क्या फल फूल रहा है और क्या चुपचाप मुरझा रहा है, हम किन मूल्यों को बचा रहे हैं और किन को मरने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों के लिए सुनने, सम्मान और मिलने जुलने पर आधारित एक ईमानदार और लगातार सामाजिक वार्ता की जरूरत है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तीय नजरिए से असली बातचीत हर इंसान की अंदरूनी गरिमा को पहचानने से शुरू होती है। सृष्टिकर्ता ने इंसानों को प्यार के धागों से बुना है, यह याद दिलाते हुए कि मानव ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया है। संत पापा ने आगे कहा, यह गरिमा संस्थाओं और सरकारों से नहीं मिलती, बल्कि यह अंदर से आती है और जिसे अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए यह हर सच्चे सामाजिक रिश्ते की नींव बनती है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की इस बात का हवाला देते हुए कि विश्वास कविता और संगीत बनाता है और सौंदर्य बनाता है, संत पापा लियो ने उन अनुभवों के बारे में बात की जो लोगों को अंदर से बदल देते हैं। एक गाना, एक कविता, एक गिरजाघर, एक आवाज, एक नजर और दोस्तों के बीच साझा किया गया एक खेल भी। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, जो खुद एक एथलीट थे, के शब्दों को याद करते हुए संत पापा ने कहा कि खेल एकता, शांति, सामाजिक मेलजोल का एक मजबूत सबूत दे सकता है। ऐसे समय में जब हिंसा और बंटवारा समुदायों को एक साथ रखने वाले रिश्तों के लिए खतरा बन रहे हैं। अपना भाषण समाप्त करते हुए संत पापा लियो ने वहां मौजूद सभी लोगों से एक नए समाज को बनाने में हीरो बनने की अपील की। उन्होंने कहा, एक ऐसा समाज जहां समय हमेशा के लिए खुला रहे, जहां संस्कृति यादों को संभाल कर रखे और बातचीत को बढ़ावा दे, जहां शिक्षा बौद्धिक ईमानदारी के साथ सच का पीछा करे, जहां कला आश्चर्य जगाए, जहां व्यापार हर इंसान की गरिमा को पहचाने और जहां काम उम्मीद का जरिया बना रहे, क्योंकि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इंसानियत की सच्ची महानता चमकती रहती है या नहीं। आइए हम जीवन के सभी हिस्सों में तालमेल बिठाने वाले नए नेटवर्क बुनने के लिए नए हीरो बने। अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा ने सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और रात्रि विश्राम के लिए मैड्रिड के प्रेरितिक राजदूतावास लौट गए।

0: पोप लियो 14वें ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन मैड्रिड के संसद भवन में स्पैनिश संसदों, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की सामान्य परिषद एवं प्रतिनिधिमंडल तथा सीनेट के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर सच्चे लोकतांत्रिक समाज को विचार, अंतःकरण एवं धर्म की आज़ादी को बढ़ावा देना चाहिए, परिवारों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि इससे देश मजबूत होता है, जीवन को गर्भ धारण से लेकर प्राकृतिक अंत तक सुरक्षित रखना चाहिए और युद्ध एवं हथियारबंद होना समाज के लिए एक विफलता है। राष्ट्रपति के स्वागत भाषण एवं उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए तथा सांसदों को संबोधित कर पोप लियो ने कहा, मैं इस ऐतिहासिक संसद भवन में मेरा स्वागत करने के लिए आभारी हूँ, जो स्पेन के संस्थागत, कानूनी और लोकतांत्रिक जीवन का एक खास केंद्र है। मैं आपके सामने रोम के धर्माध्यक्ष एवं कार्तिक कलीसिया के चरवाहे के रूप में आया हूँ, यह जानते हुए कि प्रेरित संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी को सौंपा गया मिशन धर्माध्यक्ष एवं विश्वासियों की एकता का सिद्धांत और उसकी नींव है, जो परमधम पीठ को एक खास तरीके के लोगों एवं राज्यों के साथ बातचीत में संलग्न करता है। संत पापा ने कहा, आपके बीच मेरी उपस्थिति स्पेन के साथ सामिप्य व्यक्त करना है, आपसी सहयोग के दायरे में और मानव की सेवा की भावना से दिया गया संदेश है। कलीसिया मानवता के साथ चलती है, उसकी उम्मीदों और उसके जख्मों को साझा करती है, हर युग के सवालों को सुनती तथा आज के पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन से जुड़ी हर चीज से खुद को चुनौती लेने देती है। यही कारण है कि जब कलीसिया सार्वजनिक जीवन से जुड़ी किसी भी मामले पर बात करती है तो वह संस्थाओं के सही मिशन और उन लोगों की सही जिम्मेदारी का सम्मान करने पर ध्यान देती जिन्हें कानून बनाने का अधिकार मिला है। वह दुनिया की वास्तविकताओं की स्वतंत्रता एवं कलीसियाई तथा राजनीतिक समुदाय के बीच फर्क को पहचानती है और इसी जागरूकता से कलीसिया आम भलाई की सेवा करने की इच्छा से उत्पन्न एक विचार देती है, याद दिलाती है कि मानवीय सहअस्तित्व सच में इंसानी क्यों है। पोप ने कहा, इस पद पर सामाजिक सहअस्तित्व कानूनी रूप लेता है, यहाँ मतभेदों को सुना जाता है, सुलझाया जाता और जब मुमकिन हो तो उन्हें साझा फैसलों में बदला जाता है, इसलिए हर कानूनी काम के लिए एक अहम सवाल है, इंसान की कौन सी सोच कानूनों को प्रेरित करती और वे कानून किस तरह का समाज बनाते हैं। पोप ने आगे कहा कि इस मामले में स्पेन की विरासत अत्यंत समृद्ध है, इसकी भौगोलिक और राजनीतिक पहचान एक ऐसे इतिहास से जुड़ी है जिसमें विश्वास एवं तर्क, कला और कानून, परंपरा एवं विचार एक फायदेमंद तरीके से एक साथ आए हैं, जिसने स्वतंत्र रूप से जीने, न्याय का पालन करने और सामूहिक जीवन को व्यवस्थित करने के इसके तरीके को आकार दिया है। महान साहित्यकार मिगुएल डी सर्वेंटेस के शब्दों की आजादी स्वर्ग से मनुष्यों को मिला सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अविला की संत तेरेसा की आध्यात्मिक गहराई और महान स्पैनिश कानूनी परंपरा से लेकर उनामुनो की आध्यात्मिक बेचैनी सभी याद दिलाते हैं कि इंसान पूरी तरह से मरने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह स्पेन ने जाना है कि मानव को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था में सिर्फ एक पहिए से बढ़कर कैसे देखा जाए। इसने इंसान को एक ऐसे जीव के रूप में पहचाना है जो सच के लिए खुला है, स्वतंत्रता से भरा और अनंत का प्यासा है, जिससे कोई भी दुनिया में सच्चाई बुझा नहीं सकती। एक शब्द में, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसकी प्रतिष्ठा सभी कामों से ज्यादा जरूरी है और जिसकी सेवा में कानूनी कार्रवाई शामिल है। अंत में पोप ने स्पेन के संसद के सदस्यों को नजर उठाकर देखने के लिए आमंत्रित किया, असलियत से खुद को दूर करने के लिए नहीं बल्कि यह याद रखने के लिए कि सार्वजनिक अधिकार का हर फैसला हार्ड मास के लोगों से जुड़ा होता है। उन्होंने उनसे हर सार्वजनिक फैसले में गहराई से चिंतन करने की सलाह दी कि क्या दांव पर लगा है और कि तकनीकी समाधान एवं कानूनी सुधारों के साथ साथ नैतिक बदलाव भी जरूरी है। संत पापा ने स्पेन से कहा कि वह अपनी जड़ों की याद और भविष्य की ओर देखने की हिम्मत कभी ना खोए और मिलन, संस्कृति, एकजुटता एवं उम्मीद की धरती बना रहे और उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर पृथ्वी के सभी देशों को शांति, परिवारों में मेलजोल और अंतःकरण को शांति दे। तथा स्पेन में खुशहाली, शांति एवं न्याय के दिन आए, जो संत याकूब के प्रेरितिक चिन्ह एवं पिलार की माता मरियम की उपस्थिति से पहचाना जाता है। और अंत में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत पापा के भाषण पर 7 मिनट से ज्यादा तालियां बजी।
1: संत पापा लियो 14वें ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन स्पेन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के धर्माध्यक्षकों से भेंट की और उन्हें संबोधित किया। अपने संबोधन में संत पापा लियो ने कहा,
2: El camino sinodal emprendido por la Iglesia es un proceso de escucha en profundidad.
1: कलिसिया की सिनोडल यात्रा ध्यानपूर्वक सुनने की एक प्रक्रिया है, ईश्वर की आवाज को पहचानना जो कलिसियाई समुदाय की ओर से आती है। संत पापा ने धर्माधीशकों का ध्यान 2020 और 2025 के प्रभावकारी सम्मेलन की ओर आकर्षित कराते हुए, जिसका मुख्य बिंदु ईश प्रजा का आगे बढ़ना और मैं किसके लिए हूँ, प्रेरिताई हेतु बुलाए गए लोगों की धर्म सभा, इन विषय वस्तुओं के आधार पर विशेष सवालों का जिक्र किया। हम कैसे आज की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, इस चुनौती के नेतृत्व हेतु कौन बुलाया गया है। उन्होंने कहा, इन सवालों के चिंतन में मैं यात्रा के एक चिन्ह को प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका लक्ष्य ईश्वर है, जिसकी ओर हमें अपनी निगाहें उठाने की जरूरत है। संत पापा ने कहा कि हम अपनी यात्रा के दौरान एक प्रलोभन में पड़ सकते हैं, और वह है उन स्थानों, चीजों और जीवन में अटक जाना जिन्हें हम छोड़ते हैं। यह अपने को नम्रता में पवित्र आत्मा, नए चीजों जिनसे हमारी भेंट होती है, खुला नहीं होने के कारण होता है। अतः हमारी यात्रा के प्रथम चरण में हम स्वतंत्रता और साहस के साथ अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, जिससे हम उन संरचनाओं का परित्याग कर सकें जो हमारी मदद नहीं करते हैं। संत पापा ने कहा कि शब्द की रोटी और यूखारिस्त हमारे लिए भौतिक आहार से अधिक जरूरी है, क्योंकि वे हमारे लिए मुक्ति के मार्ग हैं। संस्कारीय जीवन हमारे अस्तित्व की लय को गति प्रदान करते हैं, उसी भांति जैसे एक बालक अपनी माता से पोषित किया जाता है।
2: Algo que suele costarnos mucho al viajar es comunicarnos con el otro.
1: संत पापा ने दूसरों के संग वार्ता को यात्रा में उठने वाली कठिनाई घोषित किया। इसके कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा, भाषा और संस्कृति की विभिन्नता, अपरिचित होने के कारण अविश्वास या लड़ाई और न समझी, हम दूसरों के लिए अपने को व्यक्त करने या दूसरों को समझने हेतु कठिनाई का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा, हमें भी वार्ता के माध्यम और नई भाषाओं के उपयोग द्वारा एक नए स्वरूप का निर्माण करने की जरूरत है। कार्य करने हेतु जरूरी बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा कि सर्वप्रथम हम वार्ता करने की योग्यता रखें, हर सत्य को घोषित करने की जो हमारे प्रांत में है, अपने को नम्रता में बनाए रखना, जिससे हम न केवल समझते हों बल्कि अपने को साझा करते हों। इसे स्वाभाविक रूप में करने हेतु हमें चाहिए कि हम दूसरों की भाषा को सीखें, हम अपनी ओर से पहल करें और दूसरों के संग अपने को संलग्न करें, जिससे ईश्वरीय राज्य के बीज बोए जा सकें। उन्होंने कहा, यह प्रभु हैं जो हमें आगे ले चलते हैं, वे इतिहास और हमारी हर कहानी के स्वामी हैं, वे हमारा लय तय करते हैं, हम उनके पीछे चलते और असल में हम एक शरीर के सदस्यों के रूप में उनके संग चलते हैं। जीवन के लिए सिर्फ जरूरी चीजों को लेने के संबंध में संत पापा लियो ने संत पापा फ्रांसिस की बातों की याद दिलाते हुए कहा कि संरचनाओं की सुरक्षा को हम अच्छी बुलाहट के आगे नहीं रख सकते हैं। गुरुकुल के विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण का अधिकार है, और यह कलिसिया का अधिकार है कि वे बेहतर प्रशिक्षित पुरोहितों को अपनाएं। गुरुकुल वासियों को चाहिए कि उन्हें पर्याप्त समुदाय का अनुभव हो, उन्हें प्रशिक्षण देने वाले अध्ययन और शिक्षण में पूर्ण समर्पित हों, उन्हें आध्यात्मिक निर्देशन में सहचर्य का अनुभव हो, और उन्हें ईश शास्त्रीय ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की हो। संत पापा ने कहा, हमारी यात्रा मिलन से बनता है, जहां हम उन लोगों से मिलते हैं जो जीवन के अंधेरे से होकर गुजरते और हमें भला सामारी होने की मांग करते हैं। इस मिलन की एक दुखद बात यह है कि उनमें से कई लोग याजकों के द्वारा अपने को घायल किया गया पाते हैं। हमें हर घायल व्यक्ति को ईमानदारी से सुनने, स्वागत करने, सुरक्षा और चंगाई हेतु सही मार्ग को चुनने की जरूरत है।
3: और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित की यात्रा पर हैं। स्पेन की 7 दिनों की प्रेरित यात्रा के पहले पड़ाव मैड्रिड में तीसरे दिन आज सोमवार को संत पापा का कार्यक्रम इस प्रकार है। आज 10:30 बजे मैड्रिड के संसद भवन में संसद के सदस्यों को संबोधन, 11:30 बजे स्पानी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के मुख्यालय में स्पेन के धर्माध्यक्षों से मुलाकात, 6:00 बजे सांता मरिया ला रियल डे ला अल्मुडेना महागिरजाघर में प्रार्थना और संत पापा का उपदेश, और 7:00 बजे संत पापा संतियागो बर्नाब्यू स्टेडियम में स्थानीय धर्म प्रांत के समुदाय को संबोधित करेंगे। स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन संत पापा लियो 14वें ने कला, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और खेल की दुनिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए समय निकाला और उन्हें तेजी से बिखरती दुनिया में एकजुटता, बातचीत और उम्मीद के बंधन बनाने में नए हीरो बनने के लिए आमंत्रित किया। मैड्रिड के मोविस्टार स्टेडियम में संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था और खेल की दुनिया के साथ नेटवर्क बुनना नामक कार्यक्रम में कलाकार, शिक्षाविद, व्यवसाय नेतागण, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और एथलीट एक साथ आए और कलीसिया एवं आज के समाज के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के मकसद से बातचीत की। वक्ताओं की बातें सुनने के साथ साथ मशहूर डांसर सारा बारास और उनके दल द्वारा फ्लेमेंको संगीत और नृत्य देखने के बाद संत पापा लियो ने अपना भाषण स्पेन की बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत की तारीफ करते हुए शुरू किया, जिसमें देश की इतिहास में भुनी सुंदरता की बात की गई। फिर भी उन्होंने कहा कि पिछली पीढ़ियों की कामयाबियों की तारीफ से एक ऐसा सवाल जरूर उठता है जो हर किसी को परेशान करता है, हम भविष्य के लिए क्या विरासत छोड़ रहे हैं और इसके अलावा हम किस तरह का समुदाय बना रहे हैं। संत पापा ने समाज में नव परिवर्तन और संचार की जबरदस्त क्षमता को स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर प्रौद्योगिकीय और आर्थिक प्रगति इंसान से अलग हो जाती है तो वे अपना गहरा मकसद खो सकती हैं। उन्होंने कहा, हम मीडिया में विशेषज्ञ और प्रभावी उत्पादक बनने की जोखिम उठाते हैं, फिर भी यह पक्का नहीं होता कि हम क्यों, किस मकसद से, किसके साथ और किसके लिए उत्पादन करते हैं। हाल ही में प्रकाशित विश्व पत्र मैग्निफिका हुमानितास का जिक्र करते हुए संत पापा ने जोर देकर कहा कि इंसान कलीसिया के लिए रास्ता और सच्चा अभिन्न विकास का केंद्र बना हुआ है। इस वजह से कलीसिया संस्कृति को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि संस्कृति ही उन खास तरीकों में से एक है जिससे इंसान अपनी पहचान जाहिर करता है और उसे आकार देता है। संस्कृति और कृषि शब्दों के बीच के संबंध पर विचार करते हुए संत पापा ने अपने दर्शकों को यह सोचने के लिए आमंत्रित किया कि आज का समाज आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बो रहा है। उन्होंने पूछा, हमारे समाज में क्या फल फूल रहा है और क्या चुपचाप मुरझा रहा है, हम किन मूल्यों को बचा रहे हैं और किन को मरने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों के लिए सुनने, सम्मान और मिलने जुलने पर आधारित एक ईमानदार और लगातार सामाजिक वार्ता की जरूरत है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तीय नजरिए से असली बातचीत हर इंसान की अंदरूनी गरिमा को पहचानने से शुरू होती है। सृष्टिकर्ता ने इंसानों को प्यार के धागों से बुना है, यह याद दिलाते हुए कि मानव ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया है। संत पापा ने आगे कहा, यह गरिमा संस्थाओं और सरकारों से नहीं मिलती, बल्कि यह अंदर से आती है और जिसे अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए यह हर सच्चे सामाजिक रिश्ते की नींव बनती है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की इस बात का हवाला देते हुए कि विश्वास कविता और संगीत बनाता है और सौंदर्य बनाता है, संत पापा लियो ने उन अनुभवों के बारे में बात की जो लोगों को अंदर से बदल देते हैं। एक गाना, एक कविता, एक गिरजाघर, एक आवाज, एक नजर और दोस्तों के बीच साझा किया गया एक खेल भी। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, जो खुद एक एथलीट थे, के शब्दों को याद करते हुए संत पापा ने कहा कि खेल एकता, शांति, सामाजिक मेलजोल का एक मजबूत सबूत दे सकता है। ऐसे समय में जब हिंसा और बंटवारा समुदायों को एक साथ रखने वाले रिश्तों के लिए खतरा बन रहे हैं। अपना भाषण समाप्त करते हुए संत पापा लियो ने वहां मौजूद सभी लोगों से एक नए समाज को बनाने में हीरो बनने की अपील की। उन्होंने कहा, एक ऐसा समाज जहां समय हमेशा के लिए खुला रहे, जहां संस्कृति यादों को संभाल कर रखे और बातचीत को बढ़ावा दे, जहां शिक्षा बौद्धिक ईमानदारी के साथ सच का पीछा करे, जहां कला आश्चर्य जगाए, जहां व्यापार हर इंसान की गरिमा को पहचाने और जहां काम उम्मीद का जरिया बना रहे, क्योंकि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इंसानियत की सच्ची महानता चमकती रहती है या नहीं। आइए हम जीवन के सभी हिस्सों में तालमेल बिठाने वाले नए नेटवर्क बुनने के लिए नए हीरो बनें। अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा ने सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और रात्रि विश्राम के लिए मैड्रिड के प्रेरितिक राजदूतावास लौट गए।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: चिलिटोम अवरुद्ध होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है,
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर कृपा।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्पेन में संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा लियो 14वें ने स्पेन के मैड्रिड शहर में अपनी 3 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा संपन्न कर मंगलवार को बार्सिलोना के लिए प्रस्थान किया। शनिवार 6 जून को रोम से आरंभ हुई संत पापा लियो की स्पानी प्रेरितिक यात्रा उनकी 4थी विदेश यात्रा है, जिसके दौरान वे मैड्रिड, बार्सिलोना तथा ग्रैंड कैनरी आइलैंड्स और तेनेरीफ का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को मैड्रिड में अपने अंतिम और तीसरे दिन संत पापा लियो 14वें ने स्पेन के संसद की ऐतिहासिक भेंट की, यौन दुराचार के शिकार कुछ एक व्यक्तियों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की, आल मुदेना के महागिरजाघर में प्रार्थना की तथा सोमवार संध्या मैड्रिड के स्टेडियम में महाधर्म प्रांत के लगभग 80,000 विश्वासियों को अपना संदेश दिया। स्पेन के सांसदों के समक्ष संत पापा लियो 14वें ने वर्तमान विश्व पर व्याप्त मानव प्रतिष्ठा, आप्रवास, जीवन की रक्षा, पुनर्सशस्त्रीकरण, परिवार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शांति जैसे कुछ जरूरी मुद्दों की चर्चा की। उन्होंने स्पानी सांसदों से कहा कि एक न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक मनुष्य की अलंघनीय प्रतिष्ठा को पहचानना और उसे मान्यता देने की जरूरत है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आप्रवासियों की दुखद स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह देशों की सोच और दुनिया की नैतिक बुनियाद को चुनौती देता है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आप्रवासियों और शरणार्थियों की स्थिति में ऐसे प्रत्युत्तर की नितांत आवश्यकता है जो लोगों पर ध्यान देते हुए उन यथार्थ कारणों को दूर करे जो उन्हें अन्यत्र जाने पर मजबूर करते हैं। विश्व में व्याप्त युद्धों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा कि प्रत्येक युद्ध अंततः एक पराजय है, बातचीत करने की काबिलियत में एक दर्दनाक हार। उन्होंने कहा, हथियारों को कुछ समय के लिए चुप किया जा सकता है, लेकिन वे कभी भी सच्ची और सदा बरकरार रहने वाली शांति स्थापित नहीं कर सकते। विभिन्न मुद्दों पर संत पापा लियो के प्रभाषण के उपरांत संपूर्ण संसद भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो लगभग 7 मिनटों तक जारी रही। स्पानी संसद की भेंट के उपरांत संत पापा लियो ने स्पेन के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के धर्माधीक्षों से मुलाकात कर उनका आह्वान किया कि वे अपने बीच एकता बनाए रखें, संवाद को बढ़ावा दें, मतभेदों को दूर करें और अपनी देखभाल में सौंपे गए लोगों के सफर में साथ दें। उन्होंने धर्माध्यक्षों को स्मरण दिलाया कि कलीसिया की ताकत उसके संसाधनों की महानता से नहीं, बल्कि उसके सदस्यों की पवित्रता से, उसके पुरोहितों के साथ मिलकर काम करने से तथा उन लोगों की विनम्र और सुनिश्चित वफादारी से आती है जो खुद को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के सिपुर्द कर देते हैं।

0: सोमवार को अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर संत पापा लियो ने स्पेन में कुछ एक पुरोहितों द्वारा यौन दुराचार के शिकार हुए व्यक्तियों से मुलाकात की तथा उनके प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। परम धर्मपीठी प्रेस कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि संत पापा ने इस अवसर पर 6 व्यक्तियों से मुलाकात की और उनके साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के तीसरे दिन मैड्रिड में आल्मुदेना की मरियम को समर्पित महागिरजाघर में सोमवार संध्या एक प्रार्थना सभा के दौरान संत पापा लियो 14वें ने ख्रिस्तानुयायियों से विभाजनकारी दीवारों को गिराने और मेल मिलाप, मैत्री, सद्भाव और शांति निर्माण में योगदान की अपील की। मैड्रिड महाधर्म प्रांत की संरक्षिका आल्मुदेना की मरियम के आगे नतमस्तक होकर संत पापा ने महागिरजाघर में प्रार्थना की और उस दीवार पर विचार किया जो ढह गई थी तथा जिससे पवित्र कुंवारी मरियम की प्रतिमा निकली थी। पवित्र कुंवारी की ओर दृष्टि अभिमुख करने के लिए संत पापा ने सबको आमंत्रित किया तथा उनसे आग्रह किया कि वे अपने विश्वास की गवाही में कभी भी कमजोर न पड़ें। महागिरजाघर स्थित आल्मुदेना की मरियम प्रतिमा की भक्ति सदियों से चली आ रही है और स्पेन की राजधानी के इतिहास और आध्यात्मिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। महागिरजाघर में एकत्र श्रद्धालुओं से संत पापा ने कहा कि माँ और उनके लोगों का मिलना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक दीवार गिर गई। इस घटना को ईश्वरीय चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह उस रास्ते की ओर इशारा करता है जिसे प्रभु ख्रीस्त अपनी माँ के माध्यम से आज भी विश्वासियों को दिखाते हैं। संत पापा ने कहा कि आल्मुदेना की माँ मरियम का संदेश है कि कुछ नया, सुंदर और स्थायी बनाने के लिए हमें दीवारें तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मौजूदा मुश्किलों से आगे देखने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी जगह बनती है। उन्होंने ख्रिस्तियों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने विश्वास को सुदृढ़ करें, उदारतापूर्वक अपने विश्वास की गवाही दें तथा शांति और पुनर्मिलन के निर्माता बने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर स्थित बर्नाबे स्टेडियम में एकत्र लगभग 80,000 श्रद्धालुओं को सोमवार संध्या संत पापा लियो 14वें ने बपतिस्मा संस्कार, माता कलीसिया से स्थानीय कलीसियाओं की संलग्नता और सुसमाचार प्रचार पर चिंतन किया। उन्होंने कैथलिकों से निवेदन किया कि वे तेजी से बदलते शहर के दिल से बात करने में सक्षम आशा के समस्वर बने।
1: Buenas tardes.
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, शुभ संध्या। यह शाम विश्वास का एक बड़ा भजन बन गई है और मुझे खुशी है कि मैं आपकी आवाज में ईश्वर की प्रशंसा कर रहा हूँ और ऐसे खूबसूरत कलीसियाई परिवार के रिश्तों को मजबूत कर रहा हूँ जो बहुध्वनि की कला सीख रहा है, यानी अलग अलग लय में समरूपता। पोप ने कहा, हमारे दिलों को गाना चाहिए, यानी हमें दूसरों के साथ उनके अर्थ को समझते हुए घटनाओं और परिस्थितियों का मतलब निकालना चाहिए। कलीसिया के लिए यह अवसर धर्म विधि के माध्यम से आता है, उन घटनाओं की महान यादगारी में जिन्होंने हमें बचाया। संत पापा ने गाने को जीवन में आवश्यक बताया जो हमें दूसरों के साथ शामिल करता है, संस्कृति को चुनौती देता और उसे खुला एवं लगातार बदलते रहने के लिए कहता है। उन्होंने उपस्थित विश्वासियों से कहा, आप एक धर्म प्रांतीय कलीसिया हैं जो ऐसे लोगों के बीच है जिन्हें संगीत, नृत्य और साथ रहना पसंद है, लेकिन जो झगड़े, हार मानने और कभी कभी निराशा का भी सामना करते हैं। इन परिस्थितियों में सुसमाचार उम्मीद का रास्ता खोल सकता है। आप एक महान यूरोपीय देश की राजधानी में सुसमाचार की गवाही देते हैं जो संस्थान और संगठन की जगह है जहां वर्तमान और भविष्य के लिए जरूरी फैसले किए जाते हैं। यह जगह लाखों पर्यटकों और उन भाई बहनों के लिए भी है जो नए मौकों की तलाश में आते हैं। पोप ने आगे कहा, आपकी खुशी फैलने वाली बन जाएगी अगर आप इसे पल भर की भावना से एक स्थिर जीवन में बदल देंगे, एक गहरी भावना में जो लोगों, दलों और धर्म प्रांतीय समुदाय को नया कर दे। अंत में विभिन्न लोगों के साक्ष्यों को याद करते हुए पोप ने कहा,
1: Las anécdotas que hemos escuchado esta noche nos cuentan.
2: कि आज रात हमने जो कहानियां सुनी वे हमें बताती हैं कि इस कलीसिया में कितना जीवन है। एक व्यक्ति ने यह गवाही दी मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि मैं कलीसिया से, ईश्वर के परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, जहाँ हम सभी के लिए जगह है। दूसरे ने कहा, मुझे बहुत खुशी और जिम्मेदारी महसूस हुई जब मैं समुदाय का एक अधिक सक्रिय सदस्य बन गया और कलीसिया के बाकी सदस्यों के साथ अपनी खूबियाँ साझा की। और अन्य लोगों ने कहा, हमारे लिए इन कार्यक्रमों में सेवा करना न सिर्फ मदद करने का एक तरीका है, बल्कि हमें मिले सारे प्यार और समर्थन को वापस देने का भी एक माध्यम है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कलीसिया को देखें, सुसमाचार के संगीत पर गौर करें, उसके जबरदस्त लय को देखें। जब यह दिल तक पहुंचता है तो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका खुले बाहों से स्वागत किया गया है। जैसे हमारी बहन जो पेरू से मैड्रिड आई थी, उनके और उनके परिवार की तरह कई लोग शुरू में पास आने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने भेदभाव और निराशा के बारे में सुना है। दया भले ही कुछ ही लोगों से आए, बहुत उनके डर को दूर कर सकती है। इसलिए संत पापा ने कहा, सबके लिए एक खुली बाइबल की तरह बने, ईश्वर का वचन आपके चेहरों और जीवन में मिले। प्यार सच में एक भाषा है जो सबको घर जैसा महसूस कराता है। धन्यवाद।
1: Muchas gracias.
3: संत पापा लियो 14वें ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के चौथे दिन मैड्रिड में स्वयं सेवियों से भेंट की और उनके उदारता भरी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए ईश्वरीय राज्य का खमीर बनने का संदेश दिया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा, आप एक विशेष धन्यवाद के हकदार हैं, क्योंकि आपने अपनी सेवा और समय दिया है। इससे आपने ईश्वर, कलीसिया और संत पापा के लिए प्रेम से प्रेरित होकर किया है। मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप में से हर किसी ने अपने को दिया है, अपना हृदय, अपने हाथ, विचारों, क्षमताओं और मुस्कानों को। इसके लिए ईश्वर आप सबों को अपनी कृपाओं से भर दे, जिससे सिर्फ वे जानते हैं कैसे। संत पापा ने कहा कि मैं आप सबों के संग एक छोटा चिंतन साझा करना चाहूंगा, जिसे इस रूप में संक्षेपित किया जा सकता है।
4: Los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad.
3: ख्रिस्तीय अपने में निस्वार्थ के खमीर को विश्वास के संग साझा करने हेतु बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा, विगत कुछ दिनों में आपके अनुभव जयंती वर्ष के भाई बहनों के अनुभव के समान रहे, जिन्होंने स्वयं सेवियों के रूप में अपने को दिया। यह ईश्वरीय राज्य के आने की तरह है, विशेषकर एक खास विशेषता, स्वार्थहीनता के कारण। संत पापा ने कहा कि स्वार्थहीनता अपने में एक खमीर की भांति है, जो मानव के नैतिक और आध्यात्मिक आयामों को एक समाज में विकसित करता है, और यह ईश्वर के शहर का एक विशिष्ट गुण है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सच्ची मानसिकता का विचार करें और उसके अनुरूप जीवन यापन करें, जो हमें समग्र मानवीय विकास की ओर अग्रसर करता है। इस मानसिकता को हम सुसमाचार में पाते हैं, जो हमें कहता है, यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? संत पापा ने कहा, यीशु ख्रिस्त दुनिया में स्वर्ग राज्य की खमीर लेकर आए। उन्होंने उसे हमारे बीमार मानवता के आटे में अपने बलिदान के अनुरूप लोहू और पानी तथा पवित्र आत्मा की आग से मिलाया, जिससे वे हमें अंदर से चंगाई प्रदान कर सकें। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के उपरांत उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा उसी पवित्र आत्मा की शक्ति से, जिससे वे दुनिया में उनके प्रेम, न्याय और शांति के राज्य की निशानी और माध्यम बन सकें। यह हमारे लिए सुसमाचार की घोषणा में पूरी होती है, उससे भी बढ़कर एक जीवन के द्वारा जो सुसमाचार के अनुरूप हमें विचारने और व्यवहार करने में मदद करता है। संत पापा ने कहा, इसकी एक विशेष निशानी उदारता है, जिसे आपने इन दिनों यहाँ मैड्रिड में व्यक्त किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। शायद सांख्यिकी इसकी अभिव्यक्ति नहीं करती, लेकिन हम सभी जानते हैं इन दिनों में शहर का विकास हुआ है, क्योंकि यह ईश्वर के राज्य के निकट आया है। आप सबों को धन्यवाद। क्या यह हमारी योग्यता के परिणाम है? नहीं, ये सारी चीजें उनकी कृपा हैं। यह हमारे लिए रहस्य है, ईश्वर का प्रेम जो सूर्य और तारों को गतिशील बनाता है, उनके हृदयों को भी प्रभावित करता जिनकी भेंट उनसे हुई है। यीशु ख्रीस्त स्वयं इसे हमारे लिए कहते हैं, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। संत पापा ने कहा, हम इस मार्ग में आइए, निरंतर आगे बढ़ते जाएं, नम्रता और दीनता में, बिना किसी उपधारणा के, लेकिन विश्वास में सुदृढ़ता और उदारता में सेवा भाव से।
5: संत पापा लियो 14वें ने मैड्रिड IFEMA के सभागार में स्वयं सेवियों के दलों से भेंट की और उनके कार्यों के लिए सहृदय धन्यवाद दिया। उसके बाद संत पापा मैड्रिड हवाई अड्डे से आइबेरिया A320 विमान द्वारा सुबह 11:52 पर बार्सिलोना के लिए उड़ान भरे और दोपहर 12:45 पर बार्सिलोना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। यह संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का दूसरा पड़ाव है। स्थानीय अधिकारियों और बार्सिलोना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोन जोस ओमेला तथा दो बच्चों ने फूल गुच्छा देकर संत पापा का स्वागत किया। इसके बाद संत पापा कार से दोपहर की प्रार्थना के लिए बार्सिलोना के पवित्र क्रूस और संत इयुलालिया महागिरजाघर पहुंचे। वहां संत पापा का स्वागत खुशी से झूमती भीड़ ने किया। संत पापा लियो 14वें गिरजाघर के अंदर पवित्र संस्कार के सामने कुछ देर प्रार्थना करने के लिए बगल के चैपल में प्रवेश किया और फिर जब गायक मंडली ने शुरुआती भजन गाया तो वे बीच वाले नैव में चले गए। प्रार्थना के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने इस महागिरजाघर में दोपहर की प्रार्थना के साथ बार्सिलोना में अपनी प्रेरितिक यात्रा शुरू करने की खुशी जाहिर की। संत पापा ने कहा कि द्वितीय वाटिकन महासभा ने डिवाइन ऑफिस दैनिक प्रार्थना को दुल्हन की आवाज जो खुद अपने दूल्हे को संबोधित करती है और वह प्रार्थना जो क्रिस्त खुद अपने शरीर के साथ पिता को संबोधित करते हैं के रूप में परिभाषित किया। आज का पाठ इस बात पर भी जोर देता है कि एक ही आत्मा में हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हैं, इसलिए हम दुल्हन और शरीर इन दो छवियों पर चिंतन करें। संत पापा ने कहा, दुल्हन हमें याद दिलाती है कि कलीसिया और खासकर यह सभा जो उपहारों और करिश्मों और हर व्यक्ति की कहानी की विविधता से भरपूर है, सबसे बढ़कर एक प्यारी दुल्हन है। ईश्वर ने चाहा कि आप यहाँ रहे और आप में एवं आपके एक साथ होने में वे एक अनोखी और पवित्र सुंदरता और अच्छाई से प्यार करते हैं। इसी एहसास के साथ आप सभी, चाहे पुरोहितगण हो या विश्वासी, सभी मसीह के नक्शे कदम पर जीवन की पूर्णता की ओर साथ चलने के अपने इरादे फिर से दोहराएं। संत पापा ने कहा कि पाठ के अनुसार चिंतन के लिए दूसरी छवि है शरीर। हम सब ख्रीस्त के साथ एक शरीर हैं और जैसे कि एक शरीर में कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं और कुछ कमजोर, इसके अलावा कलीसिया के कुछ सदस्य दिखाई देते हैं, ऐसे काम करते हैं जो बाहरी दुनिया को साफ दिखते हैं, वहीं दूसरे छिपे हुए हैं, अंदर से काम करते हैं, कुछ मामलों में बिना रुके और बिना किसी के ध्यान दिए जरूरी काम करते रहते हैं। इतनी अलग अलग तरह के बातों के बावजूद संत पापा ने विश्वासियों को एकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया। हम मजबूत हैं, लेकिन हम एक हैं। हम एक हैं क्योंकि हम एक ही आत्मा से प्रेरित हैं। एक ऐसी दुनिया में जो युद्धों और बंटवारे से जूझ रही है और ऐसे समाज में जो तेजी से बंटता और अलग थलग होता जा रहा है, संत पापा ने ख्रिस्तियों से शहीद बनने की गुजारिश की, यानी उन्होंने समझाया एकता, स्वागत, मेलजोल और शांति के गवाह और नबी भले ही त्याग और बलिदान की कीमत पर क्यों ना हो। प्रार्थना समाप्त करने के बाद संत पापा बार्सिलोना के धर्माध्यक्षीय निवास के लिए रवाना हुए। संत पापा का अगला कार्यक्रम लुइस कंपनी ओलंपिक स्टेडियम में 8:00 बजे जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करना है। वहां पहुंचने पर संत पापा मोबाइल में विश्वासियों के बीच दौरा करेंगे और उनका अभिवादन करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्पेन में संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

0: विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा लियो 14वें ने स्पेन के मैड्रिड शहर में अपनी 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा संपन्न कर मंगलवार को बार्सिलोना के लिए प्रस्थान किया। शनिवार 6 जून को रोम से आरंभ हुई संत पापा लियो की स्पानी प्रेरित यात्रा उनकी 4थी विदेश यात्रा है, जिसके दौरान वे मैड्रिड, बार्सिलोना तथा ग्रैंड कैनरी आइलैंड्स और तेनेरिफ का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को मैड्रिड में अपने अंतिम और तीसरे दिन संत पापा लियो 14वें ने स्पेन के संसद की ऐतिहासिक भेंट की, यौन दुराचार के शिकार कुछ एक व्यक्तियों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की, आल मुदेना के महागिरजाघर में प्रार्थना की तथा सोमवार संध्या मैड्रिड के स्टेडियम में महाधर्म प्रांत के लगभग 80,000 विश्वासियों को अपना संदेश दिया। स्पेन के सांसदों के समक्ष संत पापा लियो 14वें ने वर्तमान विश्व पर व्याप्त मानव प्रतिष्ठा, आप्रवास, जीवन की रक्षा, पुनर्सशस्त्रीकरण, परिवार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शांति जैसे कुछ जरूरी मुद्दों की चर्चा की। उन्होंने स्पानी सांसदों से कहा कि एक न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक मनुष्य की अलंघनीय प्रतिष्ठा को पहचानना और उसे मान्यता देने की जरूरत है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आप्रवासियों की दुखद स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह देशों की सोच और दुनिया की नैतिक बुनियाद को चुनौती देता है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आप्रवासियों और शरणार्थियों की स्थिति में ऐसे प्रत्युत्तर की नितांत आवश्यकता है जो लोगों पर ध्यान देते हुए उन यथार्थ कारणों को दूर करे जो उन्हें अन्यत्र जाने पर मजबूर करते हैं। विश्व में व्याप्त युद्धों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा कि प्रत्येक युद्ध अंततः एक पराजय है, बातचीत करने की काबिलियत में एक दर्दनाक हार। उन्होंने कहा, हथियारों को कुछ समय के लिए चुप किया जा सकता है, लेकिन वे कभी भी सच्ची और सदा बरकरार रहने वाली शांति स्थापित नहीं कर सकते। विभिन्न मुद्दों पर संत पापा लियो के प्रभाषण के उपरांत संपूर्ण संसद भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो लगभग 7 मिनटों तक जारी रही। स्पानी संसद की भेंट के उपरांत संत पापा लियो ने स्पेन के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के धर्माधीक्षों से मुलाकात कर उनका आह्वान किया कि वे अपने बीच एकता बनाए रखें, संवाद को बढ़ावा दें, मतभेदों को दूर करें और अपनी देखभाल में सौंपे गए लोगों के सफर में साथ दें। उन्होंने धर्माध्यक्षों को स्मरण दिलाया कि कलीसिया की ताकत उसके संसाधनों की महानता से नहीं, बल्कि उसके सदस्यों की पवित्रता से, उसके पुरोहितों के साथ मिलकर काम करने से तथा उन लोगों की विनम्र और सुनिश्चित वफादारी से आती है जो खुद को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के सिपुर्द कर देते हैं। सोमवार को अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर संत पापा लियो ने स्पेन में कुछ एक पुरोहितों द्वारा यौन दुराचार के शिकार हुए व्यक्तियों से मुलाकात की तथा उनके प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। परम धर्मपीठी प्रेस कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि संत पापा ने इस अवसर पर 6 व्यक्तियों से मुलाकात की और उनके साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के तीसरे दिन मैड्रिड में आल्मुदेना की मरियम को समर्पित महागिरजाघर में सोमवार संध्या एक प्रार्थना सभा के दौरान संत पापा लियो 14वें ने ख्रिस्तानुयायियों से विभाजनकारी दीवारों को गिराने और मेल मिलाप, मैत्री, सद्भाव और शांति निर्माण में योगदान की अपील की। मैड्रिड महाधर्म प्रांत की संरक्षिका आल्मुदेना की मरियम के आगे नतमस्तक होकर संत पापा ने महागिरजाघर में प्रार्थना की और उस दीवार पर विचार किया जो ढह गई थी तथा जिससे पवित्र कुंवारी मरियम की प्रतिमा निकली थी। पवित्र कुंवारी की ओर दृष्टि अभिमुख करने के लिए संत पापा ने सबको आमंत्रित किया तथा उनसे आग्रह किया कि वे अपने विश्वास की गवाही में कभी भी कमजोर न पड़ें। महागिरजाघर स्थित आल्मुदेना की मरियम प्रतिमा की भक्ति सदियों से चली आ रही है और स्पेन की राजधानी के इतिहास और आध्यात्मिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। महागिरजाघर में एकत्र श्रद्धालुओं से संत पापा ने कहा कि माँ और उनके लोगों का मिलना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक दीवार गिर गई। इस घटना को ईश्वरीय चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह उस रास्ते की ओर इशारा करता है जिसे प्रभु ख्रीस्त अपनी माँ के माध्यम से आज भी विश्वासियों को दिखाते हैं। संत पापा ने कहा कि आलमुदेना की माँ मरियम का संदेश है कि कुछ नया, सुंदर और स्थायी बनाने के लिए हमें दीवारें तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मौजूदा मुश्किलों से आगे देखने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी जगह बनती है। उन्होंने ख्रिस्तियों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने विश्वास को सुदृढ़ करें, उदारतापूर्वक अपने विश्वास की गवाही दें तथा शांति और पुनर्मिलन के निर्माता बने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर स्थित बर्नाबे स्टेडियम में एकत्र लगभग 80,000 श्रद्धालुओं को सोमवार संध्या संत पापा लियो 14वें ने बपतिस्मा संस्कार, माता कलीसिया से स्थानीय कलीसियाओं की संलग्नता और सुसमाचार प्रचार पर चिंतन किया। उन्होंने कैथलिकों से निवेदन किया कि वे तेजी से बदलते शहर के दिल से बात करने में सक्षम आशा के समस्वर बने।
1: Buenas tardes.
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, शुभ संध्या। यह शाम विश्वास का एक बड़ा भजन बन गई है और मुझे खुशी है कि मैं आपकी आवाज में ईश्वर की प्रशंसा कर रहा हूँ और ऐसे खूबसूरत कलीसियाई परिवार के रिश्तों को मजबूत कर रहा हूँ जो बहुध्वनि की कला सीख रहा है, यानी अलग अलग लय में समरूपता। पोप ने कहा, हमारे दिलों को गाना चाहिए, यानी हमें दूसरों के साथ उनके अर्थ को समझते हुए घटनाओं और परिस्थितियों का मतलब निकालना चाहिए। कलीसिया के लिए यह अवसर धर्म विधि के माध्यम से आता है, उन घटनाओं की महान यादगारी में जिन्होंने हमें बचाया। संत पापा ने गाने को जीवन में आवश्यक बताया जो हमें दूसरों के साथ शामिल करता है, संस्कृति को चुनौती देता और उसे खुला एवं लगातार बदलते रहने के लिए कहता है। उन्होंने उपस्थित विश्वासियों से कहा, आप एक धर्म प्रांतीय कलीसिया हैं जो ऐसे लोगों के बीच है जिन्हें संगीत, नृत्य और साथ रहना पसंद है, लेकिन जो झगड़े, हार मानने और कभी कभी निराशा का भी सामना करते हैं। इन परिस्थितियों में सुसमाचार उम्मीद का रास्ता खोल सकता है। आप एक महान यूरोपीय देश की राजधानी में सुसमाचार की गवाही देते हैं जो संस्थान और संगठन की जगह है जहां वर्तमान और भविष्य के लिए जरूरी फैसले किए जाते हैं। यह जगह लाखों पर्यटकों और उन भाई बहनों के लिए भी है जो नए मौकों की तलाश में आते हैं। पोप ने आगे कहा, आपकी खुशी फैलने वाली बन जाएगी अगर आप इसे पल भर की भावना से एक स्थिर जीवन में बदल देंगे, एक गहरी भावना में जो लोगों, दलों और धर्म प्रांतीय समुदाय को नया कर दे। अंत में विभिन्न लोगों के साक्ष्यों को याद करते हुए पोप ने कहा,
1: Las anécdotas que hemos escuchado esta noche nos cuentan.
2: कि आज रात हमने जो कहानियां सुनी वे हमें बताती हैं कि इस कलीसिया में कितना जीवन है। एक व्यक्ति ने यह गवाही दी, मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि मैं कलीसिया से, ईश्वर के परिवार से बहुत प्यार करता हूँ जहाँ हम सभी के लिए जगह है। दूसरे ने कहा, मुझे बहुत खुशी और जिम्मेदारी महसूस हुई जब मैं समुदाय का एक अधिक सक्रिय सदस्य बन गया और कलीसिया के बाकी सदस्यों के साथ अपनी खूबियां साझा की। और अन्य लोगों ने कहा, हमारे लिए इन कार्यक्रमों में सेवा करना न सिर्फ मदद करने का एक तरीका है बल्कि हमें मिले सारे प्यार और समर्थन को वापस देने का भी एक माध्यम है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कलीसिया को देखें, सुसमाचार के संगीत पर गौर करें, उसके जबरदस्त लय को देखें। जब यह दिल तक पहुंचता है तो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका खुले बाहों से स्वागत किया गया है। जैसे हमारी बहन जो पेरू से मैड्रिड आई थी, उनके और उनके परिवार की तरह कई लोग शुरू में पास आने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने भेदभाव और निराशा के बारे में सुना है। दया भले ही कुछ ही लोगों से आए, बहुतों के डर को दूर कर सकती है। इसलिए संत पापा ने कहा, सबके लिए एक खुली बाइबल की तरह बने, ईश्वर का वचन आपके चेहरों और जीवन में मिले। प्यार सच में एक भाषा है जो सबको घर जैसा महसूस कराता है। धन्यवाद।
1: Muchas gracias.
3: संत पापा लियो 14वें ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के चौथे दिन मैड्रिड में स्वयं सेवियों से भेंट की और उनके उदारता भरी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए ईश्वरीय राज्य का खमीर बनने का संदेश दिया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा, आप एक विशेष धन्यवाद के हकदार हैं, क्योंकि आपने अपनी सेवा और समय दिया है। इससे आपने ईश्वर, कलीसिया और संत पापा के लिए प्रेम से प्रेरित होकर किया है। मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप में से हर किसी ने अपने को दिया है, अपना हृदय, अपने हाथ, विचारों, क्षमताओं और मुस्कानों को। इसके लिए ईश्वर आप सबों को अपनी कृपाओं से भर दे, जिससे सिर्फ वे जानते हैं कैसे। संत पापा ने कहा कि मैं आप सबों के संग एक छोटा चिंतन साझा करना चाहूंगा, जिसे इस रूप में संक्षेपित किया जा सकता है।
4: Los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad.
3: ख्रिस्तीय अपने में निस्वार्थ के खमीर को विश्वास के संग साझा करने हेतु बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा, विगत कुछ दिनों में आपके अनुभव जयंती वर्ष के भाई बहनों के अनुभव के समान रहे, जिन्होंने स्वयं सेवियों के रूप में अपने को दिया। यह ईश्वरीय राज्य के आने की तरह है, विशेषकर एक खास विशेषता, स्वार्थहीनता के कारण। संत पापा ने कहा कि स्वार्थहीनता अपने में एक खमीर की भांति है, जो मानव के नैतिक और आध्यात्मिक आयामों को एक समाज में विकसित करता है, और यह ईश्वर के शहर का एक विशिष्ट गुण है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सच्ची मानसिकता का विचार करें और उसके अनुरूप जीवन यापन करें, जो हमें समग्र मानवीय विकास की ओर अग्रसर करता है। इस मानसिकता को हम सुसमाचार में पाते हैं, जो हमें कहता है, यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? संत पापा ने कहा, यीशु ख्रिस्त दुनिया में स्वर्ग राज्य की खमीर लेकर आए। उन्होंने उसे हमारे बीमार मानवता के आटे में अपने बलिदान के अनुरूप लोहू और पानी तथा पवित्र आत्मा की आग से मिलाया, जिससे वे हमें अंदर से चंगाई प्रदान कर सकें। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के उपरांत उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा उसी पवित्र आत्मा की शक्ति से, जिससे वे दुनिया में उनके प्रेम, न्याय और शांति के राज्य की निशानी और माध्यम बन सकें। यह हमारे लिए सुसमाचार की घोषणा में पूरी होती है, उससे भी बढ़कर एक जीवन के द्वारा, जो सुसमाचार के अनुरूप हमें विचारने और व्यवहार करने में मदद करता है। संत पापा ने कहा, इसकी एक विशेष निशानी उदारता है, जिसे आपने इन दिनों यहाँ मैड्रिड में व्यक्त किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। शायद सांख्यिकी इसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, लेकिन हम सभी जानते हैं इन दिनों में शहर का विकास हुआ है, क्योंकि यह ईश्वर के राज्य के निकट आया है। आप सबों को धन्यवाद। क्या यह हमारी योग्यता के परिणाम है? नहीं, ये सारी चीजें उनकी कृपा है। यह हमारे लिए रहस्य है, ईश्वर का प्रेम जो सूर्य और तारों को गतिशील बनाता है, उनके हृदयों को भी प्रभावित करता जिनकी भेंट उनसे हुई है। यीशु ख्रिस्त स्वयं इसे हमारे लिए कहते हैं, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। संत पापा ने कहा, हम इस मार्ग में आइए निरंतर आगे बढ़ते जाएं, नम्रता और दीनता में, बिना किसी उपधारणा के, लेकिन विश्वास में सुदृढ़ता और उदारता में सेवा भाव से।
5: संत पापा लियो 14वें ने मैड्रिड IFEMA के सभागार में स्वयं सेवियों के दलों से भेंट की और उनके कार्यों के लिए सहृदय धन्यवाद दिया। उसके बाद संत पापा मैड्रिड हवाई अड्डे से आइबेरिया A320 विमान द्वारा सुबह 11:52 पर बार्सिलोना के लिए उड़ान भरे और दोपहर 12:45 पर बार्सिलोना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। यह संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का दूसरा पड़ाव है। स्थानीय अधिकारियों और बार्सिलोना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोन जोस ओमेला तथा दो बच्चों ने फूल गुच्छा देकर संत पापा का स्वागत किया। इसके बाद संत पापा कार से दोपहर की प्रार्थना के लिए बार्सिलोना के पवित्र क्रूस और संत यूलालिया महागिरजाघर पहुंचे। वहां संत पापा का स्वागत खुशी से झूमती भीड़ ने किया। संत पापा लियो 14वें गिरजाघर के अंदर पवित्र संस्कार के सामने कुछ देर प्रार्थना करने के लिए बगल के चैपल में प्रवेश किया और फिर जब गायक मंडली ने शुरुआती भजन गाया तो वे बीच वाले नैव में चले गए। प्रार्थना के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने इस महागिरजाघर में दोपहर की प्रार्थना के साथ बार्सिलोना में अपनी प्रेरितिक यात्रा शुरू करने की खुशी जाहिर की। संत पापा ने कहा कि द्वितीय वाटिकन महासभा ने डिवाइन ऑफिस दैनिक प्रार्थना को दुल्हन की आवाज जो खुद अपने दूल्हे को संबोधित करती है और वह प्रार्थना जो क्रिस्त खुद अपने शरीर के साथ पिता को संबोधित करते हैं के रूप में परिभाषित किया। आज का पाठ इस बात पर भी जोर देता है कि एक ही आत्मा में हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हैं, इसलिए हम दुल्हन और शरीर इन दो छवियों पर चिंतन करें। संत पापा ने कहा, दुल्हन हमें याद दिलाती है कि कलीसिया और खासकर यह सभा जो उपहारों और करिश्मों और हर व्यक्ति की कहानी की विविधता से भरपूर है, सबसे बढ़कर एक प्यारी दुल्हन है। ईश्वर ने चाहा कि आप यहाँ रहे और आप में एवं आपके एक साथ होने में वे एक अनोखी और पवित्र सुंदरता और अच्छाई से प्यार करते हैं। इसी एहसास के साथ आप सभी, चाहे पुरोहित गण हो या विश्वासी, सभी मसीह के नक्शे कदम पर जीवन की पूर्णता की ओर साथ चलने के अपने इरादे फिर से दोहराएं। संत पापा ने कहा कि पाठ के अनुसार चिंतन के लिए दूसरी छवि है शरीर। हम सब ख्रीस्त के साथ एक शरीर हैं और जैसे कि एक शरीर में कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं और कुछ कमजोर, इसके अलावा कलीसिया के कुछ सदस्य दिखाई देते हैं, ऐसे काम करते हैं जो बाहरी दुनिया को साफ दिखते हैं, वहीं दूसरे छिपे हुए हैं, अंदर से काम करते हैं, कुछ मामलों में बिना रुके और बिना किसी के ध्यान दिए जरूरी काम करते रहते हैं। इतनी अलग अलग तरह के बातों के बावजूद संत पापा ने विश्वासियों को एकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया। हम मजबूत हैं, लेकिन हम एक हैं। हम एक हैं क्योंकि हम एक ही आत्मा से प्रेरित हैं। एक ऐसी दुनिया में जो युद्धों और बंटवारे से जूझ रही है और ऐसे समाज में जो तेजी से बंटता और अलग थलग होता जा रहा है, संत पापा ने ख्रिस्तियों से शहीद बनने की गुजारिश की, यानी उन्होंने समझाया एकता, स्वागत, मेलजोल और शांति के गवाह और नबी भले ही त्याग और बलिदान की कीमत पर क्यों ना हो। प्रार्थना समाप्त करने के बाद संत पापा बार्सिलोना के धर्माध्यक्षीय निवास के लिए रवाना हुए। संत पापा का अगला कार्यक्रम लुइस कंपनी ओलंपिक स्टेडियम में रात्रि 8 बजे जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करना है। वहां पहुंचने पर संत पापा मोबाइल में विश्वासियों के बीच दौरा करेंगे और उनका अभिवादन करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।